0: Saranç Line'u.
1: Alfa.
2: Sobse Damdar, o romançı kahani.
1: Alfa programımız kaçırmayın.
2: Şandar Action Entertainer. 3 Julay ko.
1: Ben jo bana raha hun, wo itihas hai.
2: Alia Bhatt, Sharvari, Anil Kapoor aur Bobby Deol starer.
3: Shuru karo Agni Pariksha.
2: 3 Julay ko. Aapke nazdeeki cinema gharon mein Alfa.
1: India Alfa se darega.
4: वो वेट कर रहा है तुम्हारा
5: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नु 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
6: जी तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजुर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
7: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
8: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
9: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
10: सोना चाहिदा
11: भरोसा चाहिदा
10: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
12: Ready, set, go! Chadston Ford. Dandenong Road te tuhanu udik rahe hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty. Everest te Sadabahar Mustang. Brand new demo te quality pre-owned vehicles. Trade-in ate finance options be available. Aho te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Corey Nal. Radio Hanji re hawale nal pao. 3 saal di free service. Chadston Ford. Ready, set, go! Ford!

0: की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुण इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुण टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुण सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
0: भैन जी, की हाल है पिट दर्द दा?
4: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक। थैंक यू बारे दसन लई।
0: होर सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492। किचन

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
6: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
7: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
8: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनून है।
7: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
8: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
7: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
9: शुरू करो अग्नि परीक्षा
7: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा,
8: इंडिया अल्फा से डरेगा।
10: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
11: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
12: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
13: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
12: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
14: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252।

सिंह फकीर, मेरा उनका साथ रहा है कुछ 40 साल से। जलंधर रेडियो पे थे वो, मैं वहां से गाता था। फिर यहाँ आके मैंने उनका एक फर्स्ट एल्बम एक ही शायर का जो होता है वो फकीर साहब का था, उसी में से ये नज़्म है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।
1: Ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
2: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
2: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
2: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा
2: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
5: वेट कर रहा है तुम्हारा।
6: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो। बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। Chetston Ford, ready, set, Ford.
7: Kitchen da style dull lagda, bathroom vanity simple jya. Hun tension khatam karo, aa gaya ZJ Stone Mason. Tade ghar nu banaye ekdam classy. Assi banaune aa designer stone bench tops for kitchen, stylish vanity ate modern laundry. Oh vi porcelain ate marble nal, jithe elegance mildi hai durability nal. Hun na sirf ghar par tuhadi personality vi shine karegi stone de style nal. Call karo 0410 045555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
8: सोना चाहिदा,
9: भरोसा चाहिदा,
8: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
10: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802552 ते 04332802522।
11: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
12: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
11: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
12: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
13: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
14: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
15: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
16: फिर लवाइए कित्थों?
15: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
17: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
18: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हन पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
19: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
18: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: डे ऑफ स्लेवरी।

बीजेपी ने, हुण मैं सरकार नहीं कहूँगा, बीजेपी ने रणनीतियां बनानिया शुरू, क्योंकि इस सरकार का कोई काम नहीं। बीजेपी की रणनीति यह है कि जिहड़ियां गैर गठजोड़ वालियां यानी एनडीए तो बाहर जिहड़ियां पार्टियां ने उन्हां नूं किवें अपने नाल जुड़ीए, जो नहीं जुड़ते तो फिर उन्हां पार्टियां दे जिहड़े मैंबर्स ने उन्हां नूं किवें तोड़ के अपने हक दे विच कर लईए। सो इस करके इंडिया गठजोड़ दे विच, इंडिया गठजोड़ ते यूपीए दो अड्ड अड्ड चीज़ां ने, हालांकि दोहां दे विच वड्डी पार्टी कांग्रेस ही है, पर जिहड़ा यूपीए है वह तो नहीं टुटता, यूपीए ने दावा किया। इंडिया गठजोड़ दे विच ये भी आ जाती है, अपनी तृणमूल कांग्रेस भी आ जाती है जिहड़ी आप ही टुटी हुई है, आम आदमी पार्टी भी आ जाती है। सो बहुत सारिया पार्टियां आनियाँ, पर डीएमके हाले यूपीए चो भी बाहर है, इंडिया बाहर इन द सेंस कि वह नहीं उन्होंने नाल रल के आना चाहते। सो जे वोटां पैंदियां ने पार्लीमेंट दे विच, चाहे हथ खड़े करके पालन चाहे जिवें मर्जी पालन स्पीकर, जे वोटां पैंदियां ने तां बीजेपी का यह कहना है कि जे वोटा नहीं पानिया तो घट्टो घट वॉकआउट कर जो तुसी, जे साढ़े हक च नहीं पानिया, ताकि जित दे लई जिहड़ा आंकड़ा वह थोड़ा जिहा होर आसान हो सके। हुण सदरन स्टेट्स जिहड़ियां ने सरकार, सदरन स्टेट्स दियां जिहड़ियां ट्रेडिशनल पार्टियां ने जिवें टी डी पी है, वाई एस आर सी पी है, इन्हां दे नाल जोड़ तोड़ हो रही है अंदर खाते। मोदी साहब विदेशों के दौरे कर रहे हैं ताकि तुहाडा ध्यान उन्हां सुरखियां दे वल रहे, एन डी टी वी, जी न्यूज़, ए बी पी, ये सारे चैनल ये खबरां लगाई जाण के देखो जी प्रधानमंत्री आस्ट्रेलिया चले गए, प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड चले गए, जापान वाली इंडिया आ गई, इंडोनेशिया चले गए, ये खबरां। पर अंदर खाते पिछे पिछे की हो रहा है कि अमित शाह जिहड़े ने उह सदरन पार्टियां दे घरां दे विच जाके उन्हां दे नाल गल करन लगे हुए ने, एक डिग्रेसिव प्रोपेशनलिटी जिन्हों यानी कि छोटे राज्यां दी आबादी दे मुकाबले थोड़ी वध वोटेज जिहड़ी उह देण वाला एक फॉर्मूला वह अपनाया जा रहा है, और पर्दे दे पिछे अपनाया जा रहा है। और हुण तक दियां गंजोआं इह ने कि पार्टियां काफ़ी हद तक सहमत भी हो रही ने, पर इस सब नूं जिवें इत्थे भी आस्ट्रेलिया च भी हुंदा ना बहुत सारे मेले हुंदे ने, तियां दा मेला हो गया, होर मेले हो गए, उन्हां नूं कह दिता जांदा है कि जी ये फलानियां महिलावां दी जागृति दे लई है, वूमेन एम्पावरमेंट छिकू पैसे इकट्ठे करन दे लई हुंदे ने वह काम सारे। इदां ही इंडिया दे विच ये डीलिमिटेशन दा असल मकसद सरकार ने कंट्रोल लैना स्पैशली नॉर्दर्न स्टेट्स के जरिए, पर इहनूं टाइटल की दिता जा रहा वूमेनज़ रिजर्वेशन, उहदे नाल जोड़ के पेश कर रहे हैं। सो विरोधी पार्टियां दे लई खुल के विरोध करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि तुम ये तो कह नहीं सकते नहीं नहीं नहीं नहीं जनानियां 33% रिजर्वेशन कहते देना ना, इदा तो नहीं कह सकते। पर महिला विरोधी पार्टी भी नहीं तुसी होना, पर सरकार का विरोध भी करना, सो किवें करोगे तुसी? बीजेपी ने स्ट्रैटेजी ये तैयार कर ली है कि टीएमसी दे, क्योंकि टीएमसी नू हराता सीगा, टीएमसी दे मैंबर जोड़ ले ने, वो एक यह जी पार्टी के नाल उन्हां दी सांझ पवाती, सीधी बीजेपी जो जोड़न की बजाय यह जी पार्टी के नाल सांझ पवाती जिहड़े पता ही नहीं, वो पार्टी नहीं पता किसी नूं, कदे सीगी इंडिया के इतिहास के विच नहीं भी सीगी, रजिस्टर्ड पार्टी तो हैगी पर उन्होंने कदे चोणां नहीं लड़ियां कुछ नहीं, वैसे तो उन्होंने अनरजिस्टर कर देना चाहिए है, बट एनीवेज चलती है साडा चलदा है धक्का सिखा तां कर दे। दूजी चीज़ ये है कि इहदे विच टीएमसी होगी, फिर डीएमके नू अंदरों अंदर ही मनाया जा रहा, फिर जिहड़े इह ने आम आदमी वाले तो किसे काम दे नहीं काम दे, इस करके नहीं क्योंकि लोग सभा दे विच गिनती चाहीदी है, राज्यसभा दी नहीं, और जिहड़े 7 मैंबर टुट के आए ने उह राज्यसभा दे ने, सो इट डजंट मैटर एट ऑल। इसे करके आम आदमी नू इन्नी तकलीफ भी नहीं हैगी कि डीलिमिटेशन बिल दे नाल उन्हां दा कोई फर्क नहीं पैन लग्या हैगा। हाँ राज्यसभा दे कोल दे विच उन्हां दे कोल इनफ मेजोरिटी सीगी और हैगी और कमा भी लैणगे, सो उहदा एडा कोई फर्क, राज्यसभा तक तां बाद च गल जाऊगी। बिल जिहड़ा पहलां हेठले सैशन दे विचों पास होना चाहिए, लोक सभा चों होना चाहिए। अच्छा एक ये कारण, दूजा तुहानूं दस्सिया सीगा कि कैबिनेट रीशफल हो सकदा है क्योंकि हरदीप पुरी ते नितिन गडकरी दोए रडार दे उत्ते हैगे ने, निर्मला सीतारमन ने तो फाइनेंस फेल ही करता, वो कहंदे ने कि जिमें जिमें रुपया थले डिगदा डॉलर की वैल्यू उपर हुंदी है, तो जिमें जिमें डॉलर की वैल्यू उत्ते हुंदी है रुपया थले डिगदा, वो इकोनॉमी मैनू नहीं समझ आई हैगी उन्हां दी। निर्मला सीतारमन किहड़े स्कूल दे विचों इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैगे ने, आई रियली डोंट नो, मैं कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं हैगा, बट निर्मला सीतारमन एज एन इकोनॉमिस्ट फेल ने, जे चज दे इकोन

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: वैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने एक शांति ते दूजा युद्ध व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख करो इनेनेस सरपंच
3: सरपंच सिर्फ सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं
2: Punch, additionally starring

0: सरपंच 10 जुलाई सिनेमा घर
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच
0: इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन
3: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
4: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते और भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा
4: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
5: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
6: अल्फा प्रोग्राम उसका चुनना है
5: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
6: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है
5: आलिया भट्ट शर्वरी अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर
7: शुरू कर

0: वो वेट कर रहे तुम्हारा।
1: यू आर लिसनिंग रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। Stay tuned.

0: नंबर दा दे मासल इमिग्रेशन वाले दा।
1: हाँ जी अपॉइंटमेंट बुक करवाने लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी 1600

0: आगे वे
1: यार मेरा केक में छेद आ गया
2: जानू मजा जान लग गया मुक गया
1: भाई मैं चमच आता नहीं तो कह सकता मैं तो बंद भी हो गया गाला ये पुरानी फिल्मों में पुराने जो सीरियल नहीं ना इदा ही होंगे भाई अलिफ लैला लैला देखी सी अलिफ लैला
2: हर बार बदलते
1: रहते डांस नहीं करते करके मेरे को भाजी भी है वा जो अलादीन ही ना जरा मेरे को जिदा मेरे को सारे मैस्केट होंगे है ना तो पूरा हवाला फुल जाता
2: अच्छा
1: अलादीन का कहता है मेनू ना जो छाप छा मतलब एक यकू देखे
2: करूर सिंह
1: यार किन्ना घैंट अपने आप
2: पहले भी गल होगी हूं करूर सिंह तो बाद महाराजा शिव शिव ते जाओ फिर ओ बिश की गल करोगे फिर इरफान खान की गल
1: करो कर दे जी हो गया आई लव दैट करैक्टर
2: आई नो आई नो
1: हाँ जी
2: मैं तुहानू फटाफट दो खबर दे दवा हूं अज के दिन दया दो खबर बाकी है हजे
1: फटाफट चलन
2: फटाफट खबर कतल करते है इंडिया दे विचे खबरां दा दस मिनट सौ खबर
1: आई जल्दी आई जल्दी आई जल्दी
2: दो मिनट दो खबर देन लगे
1: हाँ जी पहला मिनट
2: पहली खबर हैगी है के इंडिया दे विचे गुजरात दे अंदर गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक है जिला है ते उहदे ऐन तुरंत्र ओ मतलब जंगली इलाका है ज्यादातर उस डिस्ट्रिक्ट जिम्मे अपने होशियारपुर है ना जंगली जंगल
1: जंगल अच्छा ठीक है
2: मतलब है पिंड पुंड भी है शहर भी है पर उथे एक जंगली इलाके जमा ही एन तुर जाते हुए एक पोलिंग बूथ भी बनिया हुआ पोलिंग बूथ कहता है मतलब एक बिल्डिंग बनी हुई है जो भी इलेक्शन होंगे ने स्टेट इलेक्शन होंगे ने
1: लोग
2: सभा दी आंदी लोग नहीं आते एक बंदा आंदा
1: एक
2: बंदा आंदा
1: जंगल एक ही राजा होंगे
2: जे वोट पा गया 100% वोटिंग उस पोलिंग बूथ अच्छा उतो पता भी लग जाना भी इन्हें बीजेपी पाई है कांग्रेस राजकुमार राव दी न्यूटन
1: अच्छा ठीक है
2: वो देखियो एहजी फिल्म है ना कि नक्सली इलाके ईवीएम मशीन लेके जाते ने औखे सौखे फिर वो अपनी जान दी बाजी लगा के वोटा पवांदा है बड़ी पुरानी परंपरा चलती आई है क्योंकि इस मंदिर दे विच अग्गे जिहड़ा महंत भरत दास हुंदा सी हालांकि 2019 च मौत हो गई सी पर उहने कहा होया सीगा इलाके दे विच बई मैं नहीं जाना हैगा इस मंदिर नूं खाली छड्ड के पर जो भी काम करवाना तुसी इत्थे वोटिंग पवाई जांदी रही है इत्थे बाद च उहदी मौत हो गई हुण जिहड़ा भी शिष्य शुष्य उहदे होणगे उह इत्थे ख्याल रखदे हैगे ने इहदा
1: ते भाजी जे एक ही बंदा तुसी कहा भी वोट पाउंदा जाके
2: जाके नहीं उत्थे रहिंदा
1: उत्थे मतलब उत्थे वोट पाउंदा
2: तां उहदे तों पवाई जांदी उत्थे आ तुसी गलत शब्द वरत रहे
1: अच्छा वोट उत्थे मतलब पवाई जांदी उत्थे जाके
2: आके पवाई जांदी है
1: मतलब वो एक ही बंदा 100 दे बराबर है
2: सवा लाख दूजी खबर यह है कि जे तुसी छुट्टियां च जाने हो ऐसी थां दे उत्ते घूमण जिथे नीला समंदर
1: नील समंदर
2: गरम मसाला सफेद रेत ते पहाड़ होन
1: नीला समंदर सफेद रेत ते पहाड़ होन ओए होए
2: ते ओ थां तुहानू इक्को ही जगह मिलूगी ओ सिशल्स
1: शिसल्स
2: शिसल्स अगे आपां ओह टंगट्रिस्ट नहीं सी पढ़दे हुंदे आई सॉ शिसल्स इन शेसल्स
1: अदा करके वैसे नहीं ज्यादा अंग्रेजी तक हाँ
2: ते सेशल्स जेड़ी है उथे एक अफ्रीका दे विच पैंदा है बट अफ्रीका दी इकलौती ऐसी इकलौती तो नहीं होर भी एक दो कंट्रीज हैगे ने जेड़े सोहने हैगे ने उथे
1: ठीक है
2: बट ए कंट्री बड़ी सोहनी है और एदी जेड़ी कैपिटल सिटी है वो हैगी है विक्टोरिया
1: विक्टोरिया अपनी विक्टोरिया
2: अपने इत्थे स्टेट है उथे कैपिटल
1: हाँ ठीक है
2: नाम नहीं हैगे गोरियां दे कोल दे

0: क्यों खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना ही होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।
2: रेडियो हांजी 1674

0: ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
1: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपनेयां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252
2: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है
2: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है
2: आलिया भट्ट शर्वरी अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा
2: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में अल्फा
5: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए किथों?
3: सन करंट वालिया कोलो। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
4: जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: ਸੈਟ ਗੋ ਚੈਟਸਟਨ ਫੋਰਡ ਡੈਂਡੇਨੋਂਗ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਡ ਰੇਂਜਰ ਰੇਂਜਰ ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ ਐਵਰੇਸਟ ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਮਸਟੈਂਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਡੈਮੋ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀ ਓਨਡ ਵਹੀਕਲਸ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੀਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਟਿਮ ਫੋਰਬਸ ਜਾਂ ਕੋਰੀ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਚੈਟਸਟਨ ਫੋਰਡ ਰੈਡੀ ਸੈਟ ਫੋਰਡ बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
1: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
2: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਸਰਪੰਚ
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपंच चौहान नु 0433-280-252 ते
4: 04-7-7-7-3.
5: याद रखो 9077-9733
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
5: हर कदम तुहाडे नाल

0: मस्त चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
2: यार उना दा डेंडीनोंग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
1: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया है। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
4: लादे फेरा।

0: बोनस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
4: अल्फा सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
4: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
5: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
6: शुरू करो अग्नि परीक्षा
4: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा,
5: इंडिया अल्फा से डरेगा।
7: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
8: वाओ, तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
9: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
8: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
10: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल की free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
11: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
12: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
11: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
13: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दियां वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।
14: ਉਹ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।
15: ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ।
14: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?
15: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ।
14: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 0406-021-246 ਤੇ।
16: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: हां जी हां जी

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: ता किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
3: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने।
1: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: हाँ जी

0: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुक दे नी
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाक खाए।

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सेंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेख होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न

रूप न कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लोय, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित छपे चंतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोकमाता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण गुगुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करदा अधो उर्द अर्दंग अगग उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेति अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग परसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदोदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो नराग नाम काम बहिन पे खुद ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानुताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक देव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्य सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पर आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाथ।

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्री तरम सर्वा बरनाडिये अंडंड बांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेशय के आभिज भेषय के आगाज कर्मय के आभंज भरमय के आभिज लोक के आदित सुख के अवधूत वर्णय के बेपूत करने के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशुक वर्णय के सर्वा अवर्णय के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदामे गनी बुल शिकस्ते गरी बुल पलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीम रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाह स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंद है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साकन शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसने चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सरबर गवन है, के हमेशल रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अदीस है, परंग परंग ईस है, समस्त अदीस है, अदेसल अलेख है, अभेसल अभेक है, जमीन जुमा है, अमी कुमा है, करीमल कुमाल है, गजुर जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमितो प्रभूत है, के अमितो प्रसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अभंग है, मद भार छंद तो प्रसाद, मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम, हर बार अगंज हर नर प्रभंज, अन गण प्रणाम मन मन सनाम, हर नर अखंड भर नर अमंड, अनुभव अनास मन मन प्रकाश, गुणगण प्रणाम जलथन मुदाम, अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार, गत मित उदार जल थल अमंड, दिस विस अभंड जल थल महंत, दिस विस बेअंत अनपौ अनास, त्रित तर तुरास, आजान वा एक सदा, ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजभाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्मा में आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा अनंज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा।

काल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पैदा।

अहां देव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा। अंडज जे राज से तजकीनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

0: अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रह परना गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त।

माया अगन सावी को जई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक

जय जगन्नाथ। मधुर गीत गोविंद के साथ हमारे पुण्य दर्शन की हो गई है शुरुआत। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में, मैं हूं आपका दास। ये मधुर भजन जो आपने अभी सुना, वास्तव में इसे गीत गोविंद कहा जाता है, जो 12वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित एक अनुपम काव्य है। गीत गोविंद अर्थात गोविंद भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान। इस प्रकार गीत गोविंद केवल प्रेम काव्य नहीं, बल्कि भक्ति, विरह, समर्पण और भगवान के प्रति निष्कलुष प्रेम का आध्यात्मिक महाकाव्य है। आपको बता दूं कि आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय है कि वो इसे सुने बिना सोते नहीं हैं। जी हां, रात्रि में बड़ा श्रृंगार सेवा के समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस अवसर पर श्री जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद की अष्टपदियां गाई जाती हैं। ये तो थी गीत गोविंद की महिमा। जिनके लिए ये गाया जाता है वो है हमारे भगवान श्री जगन्नाथ, जिनकी आज रथ यात्रा है श्री पुरी धाम में। करोड़ों लोग अपने भगवान को श्री मंदिर से निकलकर रथ पर विराजमान होता देखने के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। और क्या क्या होता है आज के इस उत्सव में, जानेंगे छोटे से अंतराल के बाद।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। पिछले कई दिनों से भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी की महिमा का हम श्रवण कर रहे हैं और आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। मैं तो बहुत ही उत्साही हूं, आखिर इतने दिनों बाद भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। आज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही पूरी धाम का वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। मंदिर के भीतर भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा जी का विशेष पूजा और श्रृंगार किया जाता है। लाखों श्रद्धालु मंदिर के बाहर भगवान के प्रथम दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद आता है सबसे अद्भुत और भावुक क्षण, पहंडी विजय। पहंडी का अर्थ है भगवान का झूमते हुए भक्तों के कंधों पर गर्भगृह से बाहर आना। सेवक भगवान को प्रेम पूर्वक आगे पीछे झुलाते हुए बाहर लाते हैं। मृदंग, झांझ, शंख और हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से पूरा पूरी धाम भक्तिमय हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए आ रहे हों। सबसे पहले भगवान बलभद्र जी, फिर माता सुभद्रा जी और अंत में भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने अपने रथ पर विराजमान होते हैं। रथ पर विराजमान होने के बाद ऐसा होता है जो हर एक के लिए बड़ी सीख है। क्या है बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा देवी के साथ रथ पर हो जाते हैं विराजमान। इसके बाद होता है एक ऐसा दृश्य जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। पुरी के गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण झाड़ू लेकर सफाई करते हैं और चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करते हैं रथ के सामने झाड़ू लगाने की ये प्रथा, वो भी राजा के द्वारा। यह संदेश देता है कि भगवान के सामने राजा हो या रंक, सभी समान हैं। भगवान का सेवक बनना ही सबसे बड़ा सम्मान है। फिर आती है वह घड़ी जिसका पूरी दुनिया को इंतजार रहता है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु विशाल रस्सियों को पकड़कर भगवान के रथ को खींचना प्रारंभ करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान का रथ खींचता है उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरे मार्ग में हरिनाम संकीर्तन, नृत्य, भजन, पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण चलता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ भगवान की मौसी के घर कहे जाने वाले गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। यदि उसी दिन यात्रा पूरी ना हो सके तो अगले दिन रथ आगे बढ़ाया जाता है। भगवान वहां 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं, जहां लाखों भक्त उनके दर्शन कर दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। केवल मंदिर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा, देश का हो, उसे अपने दर्शन और कृपा प्रदान करते हैं। तो जब भी आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिले, पूरे प्रेम और श्रद्धा से हरि नाम का संकीर्तन करें, भगवान की रथ की रस्सी खींचें, इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बनें। आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मेरे साथ बोलिए जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। नीला चलाया निवासाया नित्य परमात्मने, बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। अगर शारीरिक तौर पर आप नहीं जा सकते तो अपने मन में विचार कीजिए कि आप भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे हैं और गा रहे हैं। क्या

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटा च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
3: 0433-280-252 ते। 4334-6542।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।

0: 9077
1: या ईमेल info@vyimmigration.com.au
0: याद रखो 9077973
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है एक कहानियां कई सदियां दी
2: स्टारिंग तरसेम जसर गीत गुराया ते योगराज सिंह
4: दे ऑफ स्लेवरी

0: कि मैं झूठ बोल लिया
1: कोई ना,
0: रे कि मैं कुफर तोल लिया
1: कोई ना,
0: रे कि मैं जहर घोल लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।
0: ओ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले।

0: मौज उड़ावे।
1: ओ लोकी कहिंदे रब दी माया, मैं कहिंदा अन्याय ते की मैं झूठ बोलिया
0: कोई ना,
1: ते की मैं कुफर तोलिया
0: कोई ना,
1: ते की मैं जहर घोलिया
0: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।
2: ओ हट के भला जी बच के।
3: Ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
4: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
5: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
4: फिर लवाइए कित्थों?
5: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
6: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिया दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते
7: 0433-280-252 ते। सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकते हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इनफो कॉल 0499-2535-45 ते।
4: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: क्या आप एक ड्रिंक के लिए मना करना पसंद करेंगे या फिर ये कहना कि नहीं मैंने अपना लाइसेंस गवा दिया है?
3: वैसे मैं ज्यादा शराब पीने वालों में से नहीं हूँ। हमारे काम पर एक सेलिब्रेशन था और मुझे लगा कि मैं ड्रिंक लेने से मना नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मैंने तो कानूनी सीमा के भीतर ही पी है, लेकिन मुझे 0.05% से ज्यादा ब्लड अल्कोहल के साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया। अब मैं ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी मम्मी को कहना पड़ा कि मैं उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उन्हें ना कहना सबसे खराब सजा है। काश इस सब की बजाय मैंने उस दिन ड्रिंक लेने से मना कर दिया होता।
2: जिम्मेदारी से रहें। अगर आपने शराब पी है तो ड्राइव नहीं करें। TAC से एक संदेश।
4: सोना चाहिदा,
5: परोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
6: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
7: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
6: स्टारिंग द सेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
8: दे आर स्लेवरी इन

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।